अंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अंत के आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 12। प्रस्तुत करेंगे RJ किरणी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्लियान ने। निर्देशन भारत सुपोरी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। पेश है प्रोग्राम पहलू और गीत। सभी सुनने वालों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। आज के पहलू और गीत प्रोग्राम का शीर्षक है आंखें। आंखें हैं जो दिल की जुबान बोलती हैं, आंखें हैं जो प्यार की गहराई में डूबती हैं, आंखें हैं जो जीवन की सच्चाई दिखाती हैं, और आंखें ही हैं जो दिल को जीतती हैं।

दिल की दुनिया में अपने ख्वाबों का जहां, ख्वाबों की दुनिया में अपने दिल का घर, जीवन की राह में अपने पैरों की आहट, दिल की धड़कन में अपने ख्वाबों की सांस।

अखियों में तेरी छुपी हुई बातें, दिल की गहराई में तेरी छुपी हुई सांसें, अखियों में तेरी देखी हुई ख्वाबों की दुनिया, दिल की धड़कन में तेरी छुपी हुई बातें।

आंखें हैं जो दिल की गहराई में बसती हैं, आंखें हैं जो प्यार की गहराई में डूबती है, आंखें हैं जो जीवन की खूबसूरती दिखाती है, आंखें ही हैं जो दिल को जीतती है।

आँखों की तारीफ कैसे करें हम, आँखों की गहराई में खो जाना है, आँखों के प्यार में जीना है, आँखों के प्यार में खो जाना है।

अखियों में तेरी जादू की झलक, दिल की गहराई में तेरी प्यार की बात, अखियों में तेरी देखी हुई दुनिया, दिल की धड़कन में तेरी छुपी हुई सांसें।

0: आंखों से बयां होती है हर एक बात, ये वो किताब है जिसमें हर राज लिखा होता है साफ साफ।
1: आंखों आंखों में

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 12, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: पहले भी बरखा थी
2: तो क्या हुआ,
1: पर ऐसी कहाँ थी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। और दोस्तों जिस तरह की हम आपको हर बार एक नई लघु कथा सुनाते हैं, आज की जो लघु कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके रचयिता हैं श्री कुणाल शर्मा, और इस लघु कथा का शीर्षक है उपेक्षित। वह कक्षा में फर्श पर अकेला बैठा रहता था। कक्षा के लगभग सभी विद्यार्थी उसे अपने साथ बेंच पर बैठाने से कतराते थे। उसकी पैंट की दोनों जेबें उधड़ी रहती थी और ऊपर के दोनों बटन कमीज से नदारद। शरीर तो हड्डियों का ढांचा था और दांत पीले पड़ गए थे। उसके करीब खड़े होने पर भी एक तीखी बदबू नथनों में उतर जाती थी। अपने पीरियड में तो दूसरे बच्चों के साथ उसको बैठा अध्यापक देखते थे, परंतु बाद में वो फिर से फर्श पर बैठा हुआ नजर आता। पिछले कई रोज से अध्यापक उसे अपने विषय की पाठ्य पुस्तक लाने के लिए टोक रहे थे, परंतु रोज वो एक ही जवाब देता, मास्टर जी कल ले आऊंगा। और उस दिन कक्षा में पढ़ाने के लिए पुस्तक खोलते हुए अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों पर एक नजर डाली। वो कक्षा में अकेला था जो फिर से किताब नहीं लाया था। क्यों बे, तू आज भी किताब नहीं लाया? उस पर अध्यापक गरजे, मास्टर जी कल ले आऊंगा। उसका जवाब सुनकर अध्यापक गुस्से में भर गए और बालों से खींचते हुए उसके गाल पर चार पांच थप्पड़ जड़ते हुए बोले, किताब क्यों नहीं लाता तू? क्या करता है तेरा बाप? सर, इसके माँ बाप नहीं है, अपने चाचा के पास रहता है, उसकी बगल में बैठा हुआ लड़का बोला। ये सुनकर अध्यापक का गुस्सा थोड़ा हल्का पड़ गया, जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी के छींटे मार दिए हों। और चेहरे पर बनावटी गुस्सा लिए हुए अध्यापक ने उससे जवाब तलब किया, अबे गधे, जब तेरे पास किताब ही नहीं है तो स्कूल में क्या करने आता है? जी जी जी, स्कूल में भरपेट खाना मिल जाता है ना, उसने सुबकते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अध्यापक निरुत्तर सा अपने हाथों में पुस्तक थामे हुए अपनी कुछ

0: ದೈಚು ಬಜಾನ್ ನಮತ್ ಅಶಾರ್ಯ ಸಿಫರ್ ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपकी जिंदगी की रवानी ललेश्वरी जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना आत्मज्ञान प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: नमस्कार, आज का जो ललवाक ललेश्वरी शिवयोगिनी द्वारा कहा गया है ये बहुत ही विचित्र है क्योंकि इसमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। ललदेत कहती है गोरस प्रछोम साश लेटे यस्न के मना तस के ना प्रसान प्रसान थचस्त लूसस केहनस निशी क्या था अंदरा। यानी ललदेत कहती है गोरस प्रछोम साश लेटे हजारों बार मैंने अपने गुरु से पूछा यस्न के मना तस के ना जिसे कुछ भी नहीं कहते उसका नाम क्या है। प्रसान प्रसान थचस्त लूसस पूछते पूछते मैं थक और हार गई केहनस निशी क्या था अंदरा और अंत में कुछ नहीं मैं से ही सब कुछ निकला। ललदेत की वो प्रभु को जानने की प्यास और उस प्रभु को जानने में वो अपने गुरु के पीछे पड़ी हुई है। वो गुरु भी क्या रहा होगा और ललदेत भी क्या रही होगी कि जो निरंतर बिना थके लगातार निरंतर उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। तो ललदेत हमें ये इशारा करती है यहाँ पे कि जो नाम रिचुअल्स प्रैक्टिसेस इनमें प्रभु नहीं मिलता। नाम तो हम इंसानों ने दिए हैं परमात्मा के, कोई भगवान कहता है कोई गॉड कहता है कोई अल्लाह कहता है। ललदेत के कहने के अनुसार नामों में कुछ नहीं रखा तो और अंत में मैंने जो पाया वो पाया कि कुछ नहीं में ही वो सब कुछ है। यानी जो मैं पूछ रही थी जिस सच्चाई की खोज मैं कर रही थी वो सच्चाई की खोज मुझे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं मिला। वो खोज मेरी खत्म हुई जब मैं अपने में ही डूब गई, जब मैंने अपने आप को ही समाप्त किया। अपने आप को समाप्त करने का मतलब ये है कि जिन विचारों से मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ बनाता हूँ वो विचार ही जब मैंने खत्म कर दिए और विचारों के पार चला गया तो उस कुछ नहीं में से मुझे कुछ दिखाई दिया। और साइंस भी यही कहता है कि ये जितना भी मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स का ये नथिंगनेस से निकला हुआ है। ये सारा एक क्वांटम फील्ड है और उसी क्वांटम फील्ड की नथिंगनेस में से ये सारी फिजिकल वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन हो

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें बरसों

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब की सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी, अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

और अक्सर लौट आती हो तुम शाम और सहर मेरी दुनिया में, छू जाते हो मेरी उम्मीदों को, पिघल जाते हो मेरे साथ इस बर्फीले मौसम में, अपने जज्बात कई हादिसात लिए, तुम खुशबू हो रंगी नूर हो, भीगते मौसम में भीगती बारिश का एहसास हो, तुम मेरे हो।

ये वो एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शब रोज। मेरी अनदेखी अनसुनी इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते चलते

मिली जुली गीतों की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। कहीं उम्मीदों का चिराग बुझ गया, तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।

सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे हर हाल में, लेकिन बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े, रिश्ते नाते, हुस्न वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना।

तन्हाई में पुकारा किसने, इस लम्हे को संवारा किसने, दिल में लहर उठी है कोई, मुझको अभी पुकारा किसने, सब कुछ डूब गया साहिल पर, ऐसे किया किनारा किसने, मिलने लगा है इसमें सुकून, अब दर्द बनाया चारा किसने, बेहोशी के इस आलम से मुझको आज उभारा किसने।

रात धीरे धीरे खो जाती है अंधेरे के आगोश में। टिमटिमाते तारे आसमां में बिखराते हैं नजारे। चांद लगता है ऐसे जैसे बेकरार हो किसी की याद में। शाम ढलती हुई पर्वतों के पेड़ों पर मानो कुछ पल के लिए ठहर जाती है और सुरमई उजालों में चंपई अंधेरा एहसास दिलाता है दिलबर का, जो उससे मिलकर

के समंदर में हंसी लम्हे तलाशते कई बार गुजर जाती है तमाम जिंदगी, मगर वो खलिश, वो चुभन, वो प्यार का मीठा सा एहसास नहीं मिलता। और यूं ही जिंदगी गुजर जाती है बिना कुछ कहे।

होता है सांसों में और आता है नजर चेहरे पे। आज भी ठहरे सागर में लहरों के कारवां बेताब है रक्स करने को। आज भी आईने दिल पर एक साया बेकरार है अपना अक्स भरने को। शायद तुम्हें मालूम नहीं तेरी तलाश में बहारों के फूल महके हैं बुलबुल चहके हैं। क्यों जर्द पत्तों के मौसम में गुम हो गई हो।

दोस्तों मिले जुले गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: ये फिजाए।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
2: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। कार्यक्रम आधारित है पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। पेश करेंगे भारत सोपुरी।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी, लेके आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक नया एपिसोड। वितस्ता गीतमाला पूरे विश्व में सुना जाता है। हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी ने अपने कविता संग्रह FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता को भेजे हैं। इन कविता संग्रहों का अध्ययन करने के बाद हमने निर्णय किया कि वितस्ता गीतमाला के माध्यम से उनकी लिखी कविताओं को आप तक पहुँचा सके। मीना भट्ट सिद्धार्थ 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ साल लोक आयुक्त भी रही हैं। एक कवित्री के नाते जाने माने कवियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद से समय समय पर इन्हें नवाजा है, जैसे बीकानेर से श्री रवि शुक्ल जी, सीहोर मध्य प्रदेश से श्री धर्मराज देशराज जी, सीडी मध्य प्रदेश से श्री नजर द्विवेदी जी, मुंबई से श्री हीरालाल यादव व अन्य। आज जो कविताएं गजलें आपको हम सुनाएंगे वो श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के प्रकाशित काव्य संग्रहों एहसास के मोती व ख्याले मीना पर आधारित है और आज का ये एपिसोड समर्पित है श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के दिवंगत पुत्र सिद्धार्थ को, जिनका निधन 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। पहले कुछ दोहे आपको सुनाते हैं जिनके माध्यम से हम उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जी को याद करेंगे। मीना जी लिखती हैं, जन्म मरण का खेल ये समझ न पाई पार्थ, गीत गजल था छंद भी सब कुछ था सिद्धार्थ, बसे क्षितिज के पार तुम भूल गए सिद्धार्थ, अब जीवन ये बोझ है क्या साउथ क्या नॉर्थ, चली तेज पुछवा हवा रूप बड़ा विकराल, जलता दीपक बुझ गया खोया घर का लाल, पीर समझ पाया नहीं बैरी था संसार, मित्र अकेले मातू थी करे स्वप्न साकार, सूखे सूखे हैं अधर अखियों में है नीर, ममता बड़ी अधीर है उर है अथा पीर, कबीरा साखी मौन है चुप मीरा की श्याम, रूठे सीता राम भी जप लूं कैसे नाम, चर्चा करती रात दिन मिटे नहीं संताप, खंडित है विश्वास सब करते नित विलाप, मोह त्याग कर चल दिया भूला मातु दुलार, पल पल लड़ता मौत से लिए अश्व की धार, आतिशय अंतस पीर है मनवा रहे उदास, राजा बेटा लाडला करे हृदय में वास, बस यादें ही शेष है मीना अब सिद्धार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ। ये शब्द है मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के अपने पुत्र के लिए।

मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, जिंदगी भर के मेरे असबाब पत्थर हो गए, आपके जाते ही सारे ख्वाब पत्थर हो गए, देख कर तूफान सब गिरदाब पत्थर हो गए, आंसुओं के भी मेरे सैलाब पत्थर हो गए, बाद शब की सांस भी नाजो अदा से थम गई, मात खाए चांद तारे बाब पत्थर हो गए। अब मयसर है कहां हमको वफा संसार में, रिश्ते नाते और सब अहबाब पत्थर हो गए, अब तलक दुनिया में जिनकी कोई कीमत ही न थी, जब तराशा है उन्हें नायाब पत्थर हो गए, इल्तिजा है दे खुशी इस सरजमी को ऐ खुदा, नरमो नाजुक फूल क्या अब दाब पत्थर हो गए, मुफलिसों को पूछता कोई नहीं संसार में, जुल्म भी इतने हुए आसाब पत्थर हो गए, कब मिले इनको रिहाई इस कफस से अब खुदा, कैद में मीना हसी सुरखाब पत्थर हो गए।

एक बहुत ही उम्दा गजल मीना जी ने लिखी है और मीना जी कहती हैं, बेजुबां रखते नहीं नफरत किसी के वास्ते, आदमी रखते हैं लेकिन आदमी के वास्ते, आरजू कुछ और इसको और न कोई जुस्तजू, बस ये दिल पागल हुआ है आप ही के वास्ते। मुख्तसर है जिंदगी, तैयारी कर लो हश्र की, वक्त कुछ अपना निकालो बंदगी के वास्ते। हाथ से अपने तू मुझको जहर का प्याला पिला, आ गया दीवाना तेरा खुदकुशी के वास्ते। मेरी किस्मत में कहीं कोई दिया रोशन न था, मैंने खुद को ही जलाया रोशनी के वास्ते। छोटे कामों से नहीं मिलती बुलंदी दोस्तों, काम कुछ ऊंचा करो अब बर्तरी के वास्ते। एक झलक तेरी मिले तो रुखसती हो पुरसकूं, तेरे दर पर आया हूं मैं बस इसी के वास्ते। मीर गालिब दाग के जैसे ही मीना ने भी अब जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते, जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते। वाह, बहुत खूब मीना जी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6, और आज हम आपको जो गीत गजल सुना रहे हैं वो आधारित है पूर्व न्यायाधीश व कवयित्री श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों ख्याल मीना व एहसास के मोती से। चल की नफरत को तेरी हम भी मोहब्बत कर दें, नैन से नैन मिला कुछ तो शरारत कर दें, अपने वालिद की भी कर ले वो जरा सी इज्जत, नस्ले नो को चलो हम अब ये नसीहत कर दें। मुफ्त में बैठ के तोड़े हैं जो रोटी घर पे, जर कमाने की कोई उनमें भी आदत कर दें, पाठ हमने पढ़ा सत्य अहिंसा का वो, नफरतें सारी मिटा खुद को तथा गत कर दें, इश्क के जुर्म में मुझको न चढ़ा दे फांसी, आप नाराज सही मेरी वकालत कर दें। कुछ करें ऐसा कि गैरत रहे नेताओं में, जिस्त में उनके शराफत की जरूरत कर दें, भ्रष्ट करते न कोई काम बिना पैसे के, क्यों न जायज ही जमाने में ये रिश्वत कर दें, आरजू है नहीं दौलत की मुझे अब मीना, आप अपनी ये गजल मुझको वसीयत कर दें।

0: चल।
1: अब कुछ गजलें आपको सुनाते हैं दूसरे काव्य संग्रह एहसास के मोती से। मीना जी लिखते हैं, वक्त के साथ चली चलती चली मीलों तक, साथ मेरे चली ख्वाबों की कली मीलों तक। आपकी याद में कुछ हाल हमारा यूं था, अश्क बहते रहे दिन रात जली मीलों तक। तेरे दीदार की हसरत थी सदा सीने में, देखते हम थे मोहब्बत की गली मीलों तक। काश मिल जाता हमें कोई जहां में अपना, दिल में हसरत यही अब देख पली मीलों तक। तन्हा था मैं न सफर में थी तेरी यादें भी, तेरी यादें तो थी मिस्री की ढली मीलों तक। खत्म होती है कहां रात गमों की साहिब, चांद की रोशनी भी हमको छली मीलों तक। हमने तन्हा ही गुजारा है सफर ये मीना, हर कदम तेरी कमी हमको खली मीलों तक। बहुत खूब, वाह।

श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, मेरी उल्फत के सहारे मुझे वापस दे दो, वो मेरे चांद सितारे मुझे वापस दे दो। चूम कर माथे को देते थे जो अक्सर तोहफे, चांद से मां के दुलारे मुझे वापस दे दो। हर घड़ी देते थे बचपन में जो ढेरों खुशियां, वो ही जादू के पिटारे मुझे वापस दे दो। देख लो चाक गिरेबान हुआ है मेरा, गुजरे दिलकश वो नजारे मुझे वापस दे दो। जिनको बरसात के पानी में चलाते थे कभी, फिर वो खुशियों के शिकारे मुझे वापस दे दो। अहमियत जिनकी जुदाई में समझ आई है, अपनी आंखों के इशारे मुझे वापस दे दो। खत मोहब्बत में लिखे थे जो तुम्हें मीना ने, आज बेखौफ हो वो सारे मुझे वापस दे दो। आज बेखौफ वो सारे मुझे वापस दे दो।

आज के इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हुआ जा रहा है। एक आखिरी गजल मीना जी के कलम से, वो लिखती हैं, लिखी थी इश्क की जो दास्तां कागज पर, वो आज पढ़ रहा सारा जहां कागज पर। सियासी लोग फिजाओं में गोल के नफरत, चला रहे हैं सब अपनी दुकान कागज पर। करे तो कैसे करें फैसला भला मुनसिफ, रकम है सारी ही झूठे बयां कागज पर। अमीर अब तो हड़पते हैं हक गरीबों का, गरीब ढूंढ रहे हैं मकान कागज पर। जफा के दौर में उम्मीद भी है बेमानी, बचे हैं हरफे वफा के निशान कागज पर। जमीन पे तो हकीकत में कुछ नहीं दिखता, मची है चारों तरफ खींचतान कागज पर। न थी सितारों की कुछ आरजू मुझे मीना, उतार लाए मगर आसमां कागज पर। अब आपसे समय है इजाजत लेने का और आपको छोड़े जा रहा हूं एक मनमोहक गीत के साथ। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर धन्यवाद श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने ये काव्य संग्रह हमें यहाँ भेजे। हमारी ओर से ये एक छोटी सी भेंट मीना जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित था पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर एफ एम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सी लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 22, आपातकालीन तैयारी। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया RJ किडनी ने, रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।

0: अरे दादाजी, ये क्या हो रहा है?
1: हम जुम्बा कर रहे हैं।
0: वाओ, फिटनेस फ्रीक।
1: बीमार होने के बाद कसरत शुरू करने से तो अच्छा है आज ही कल के लिए तैयार रहा जाए।
0: और आप दोनों का योग सेशन।
1: हाँ, वो तो है ही, पर हमने ये चैलेंज लिया है।
0: आप दोनों दोस्त मिलकर कमाल ही करते हैं।
2: हम दोनों ने शर्त लगाई है, जो जल्दी थक जाएगा वो दोनों के लिए हलवा बनाएगा।
0: हलवा? आप दोनों का तो शुगर है।
2: अरे आज हमारा चीट डे है।
0: आप दोनों ने सोशल मीडिया देख देख कर सारे जेन जी वाले गुण अपना लिए हैं।
1: आजा, तू भी हमें ज्वाइन कर ले।
0: नो थैंक यू दादाजी, मैं अभी अभी बैडमिंटन खेल कर आ रही हूँ।
1: हाँ हमें पता है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। तू आ जाएगी तो तुझे भी हलवा में हिस्सा देना पड़ेगा।
2: और वो हम दोनों का है।
0: वेरी फनी।
1: पर तू हमें ज्वाइन कर सकती है।
0: फिर हलवे का क्या होगा?
2: वो तो हम खाएंगे।
0: लगता है आज आप दोनों ने कुछ उठपटांग खा लिया है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं।
1: खाया तो नहीं है, पर अब खा लेंगे।
0: क्या
1: हलवा?
0: ओफो, मैं तो चली।
2: अरे रुक जा बिटिया, अब मजाक बंद, हमें सच में तेरी जरूरत है।
0: हलवा बनाने के लिए?
1: हम जिंदगी का हलवा आराम से खा पाए उसके लिए तेरी मदद चाहिए।
2: और हम जो काम करने वाले हैं उससे तू भी अपनी जिंदगी का हलवा आराम से खा पाएगी।
0: मुझे कुछ समझ नहीं आया।
2: हम तुझे समझाते हैं,
0: पर
1: पहले तुझे एक काम करना होगा।
0: बोलिए।
1: तुझे?
0: और बोलिए भी।
1: पहले तुझे हलवा बनाना होगा।
0: सच में आज आप दोनों को कुछ हो गया है।
1: आज हम दोनों ने एक फैसला किया है।
2: अब तू हमें बताएगी कि हम सही कर रहे हैं या नहीं?
1: क्योंकि जेन जी बड़े स्मार्ट होते हैं।
0: वो तो होते ही है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
1: तू तो जानती है मैंने पूरी उम्र नौकरी की, फिर रिटायरमेंट के बाद ये घर बनवाया।
2: हमारी जनरेशन के लगभग हर आदमी की यही कहानी है।
0: हाँ तो
1: हमने जिंदगी को उस तरह नहीं देखा जिस तरह तुम लोग देखते हो।
0: हम कैसे देखते हैं?
2: तुम लोग जिंदगी एंजॉय करते हो, जिम्मेदारियां भी समझते हो, लेकिन सबसे पहले अपने को खुश करना जानते हो।
1: हमारी पूरी जिंदगी घर बाहर की जिम्मेदारियां उठाते ही बीत गई। अब हमें एहसास हो रहा है कि अपने वर्तमान को सही रखने के चक्कर में हम भविष्य के बारे में प्लान ही नहीं कर पाए।
2: तू ये मत सोच बेटा कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, लेकिन
0: लेकिन मैं समझ गई छोटे दादाजी, और आप लोगों ने जो भी फैसला किया है सही ही किया होगा।
1: अरे ऐसा नहीं लक्ष्मी बेटा, पहले तू हमारा प्लान सुन, फिर हमें एडवाइस भी कर।
0: ओके, लेकिन लंबी बातचीत के पहले एक काम तो करना ही पड़ेगा।
1: क्या?
0: हलवा खाना पड़ेगा। तो आप लोग पसीना पोंछिए, रेडी होइए, मैं अभी हलवा लेकर आती हूँ।

0: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तियों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की नींव है। हमारे बुजुर्ग, उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छिपी होती है और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का ये शो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया।
2: बिल्कुल सही कहा दादू, हमारे बुजुर्ग वो पेड़ है जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। आज हम जानेंगे कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हमारे माध्यम से अब आप सब जानते ही हैं कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है।
1: हाँ लक्ष्मी, और इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। चलिए एक एक करके इन योजनाओं को दोहरा लेते हैं, ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वे इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
2: सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC की। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता दी जाती है। सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी।
1: सही कहा लक्ष्मी, और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाए उनके लिए सरकार ने एल्डर लाइन 1-4-5-6-7 हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान करती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है।
2: और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेरेटिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं।
1: बहुत बढ़िया, और अब बात करते हैं सेज की, यानी सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल की। ये एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाएं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होती है, बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाता है।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी,
3: जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रख रखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल, और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित है, उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है। इसके तहत BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हील चेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दिए जाते हैं।
4: लक्ष्मी बिटिया, हम वयो अभियोदय योजना का पूरा लाभ ले रहे हैं। अब तू हमें बता कि हम फ्यूचर के लिए क्या प्लान करें कि आगे का समय बिना कठिनाई के कट जाए।
1: अरे तू वो बताना जो तू मुझे बता रहा था।
4: वो छोड़ना, लक्ष्मी बिटिया को ही रास्ता बताने दे।
2: अरे बताइए ना, अपने क्या सोचा है।
4: वो रहने दे लक्ष्मी बेटा, थोड़ा रिस्की है।
1: अरे मुझे तो कह रहा था ये सबसे सही तरीका है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का।
4: पर ये भी तो कहा था कि बहुत लोग अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं।
1: लेकिन वो
2: एक मिनट, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं?
1: हाँ, तुझे कैसे पता चला?
2: क्योंकि मैं जनजी हूँ।
4: तो तू क्या कहती है इस बारे में?
2: देखो दादाजी, मैंने अभी अभी जॉब शुरू किया है, लेकिन जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिली मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया।
1: शेयर मार्केट में?
2: प्लान तो अपनी जरूरत और क्षमता के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो प्लान मुझे सूट करता है वो आपको भी करे।
4: देखा, मैं कह रहा था ना रहने दे, शेयर वेयर मार्केट अपने बस की बात नहीं है।
2: क्यों नहीं है? किसी भी काम को यदि सही तरीके से किया जाए तो उसका अच्छा फल मिलता ही है। फिर नफा नुकसान तो किसी भी प्लान में हो सकता है।
1: तो तेरे कहने का मतलब है हमें शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए?
2: मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ।
4: मैंने सुना है बड़ी रकम इन्वेस्ट करो तो अच्छा रिटर्न मिलता है, हमारे पास तो इतना अमाउंट नहीं है।
2: नहीं छोटे दादाजी, एक साथ बड़ी रकम लगाना ही इन्वेस्ट करना नहीं होता। बहुत से तरीके हैं जिनसे हर महीने छोटी छोटी रकम लगाई जा सकती है।
1: हम चाहते हैं कि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें।
4: हाँ, अभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े।
2: बहुत सही सोच है।
4: थोड़ी झिझक हो रही थी कहीं बच्चे ये ना सोचे कि हम उन पर विश्वास नहीं करते, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो तो हमारा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं।
1: तू तो जानती है हमारा उद्देश्य क्या है।
2: जी, शारीरिक हो आर्थिक, हमें हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
1: तेरे बोलने से बड़ा उत्साह मिला, सुना तूने?
4: सुना।
2: अब एक चीज और सुनिए।
1: सुनाइए।
2: आपको याद है दादाजी, मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
1: हाँ हाँ, जो पहले ही दिन तेरी अच्छी दोस्त बन गई थी।
2: हाँ, आज मैं उसकी मम्मी से मिली। मेरी बातों से आपको जितना उत्साह मिला है, उनकी स्टोरी सुनकर उससे कई गुना ज्यादा उत्साह मिलेगा।
4: अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने?
2: वो हमारी स्टोरी की हीरोइन है, आपकी सुविधा के लिए उनका नाम रख देते हैं
4: सुनीता रख देते हैं।
1: अच्छा, तू अब कॉलेज वाली सुनीता को भूला नहीं है अभी?
4: अरे वो बात नहीं है।
1: वो बात नहीं है तो तेरे मुंह से झट से उसका नाम क्यों निकला?
4: तू भी क्या बच्ची के सामने।
2: ठीक है, हम उनका नाम रख देते हैं सुनीता। तो कहानी यूं है कि सुनीता एक सामान्य परिवार की लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में अच्छी समझदार, वो करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन जैसा कि हमारे आम परिवारों में होता है, उसकी भी 22-24 साल में शादी हो गई। उसने अपनी गृहस्थी भी बड़ी समझदारी से संभाली, घर परिवार नाते रिश्तेदार सबकी अच्छी तरह देखभाल करती।
1: इसमें खास क्या है लक्ष्मी? हमारे समाज में तो ज्यादातर औरतें यही करती हैं।
2: राइट, ये ख्याल सुनीता के मन में भी आने लगा जब वो 55-56 साल की हुई।
4: ओ, तो ये कहानी उनके बुढ़ापे की है?
2: नहीं, ये कहानी उनकी दूसरी जवानी की है।
1: अरे बिटिया, तुम तो आगे सुनाओ। ये पगला तो उसी सुनीता को इमेजिन करने लगा था जिसे ये कॉलेज में पसंद करता था।
4: झूठ के बोल रहा है, बस मैं ही उसे पसंद करता था। और तू तो उसके लिए कभी बेर तो कभी अमरूद कभी कच्ची कैरी लेकर आता था।
1: वो तो तेरी खुशी के लिए।
4: बड़ा आया मेरी खुशी चाहने वाला। बिटिया तुम तो कहानी आगे बढ़ाओ, इसकी झूठी बातों में मत फंसो।
2: दादाजी और छोटे दादाजी, आप दोनों उस सुनीता को पसंद करते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस सुनीता की कहानी सुनकर आप इसके फैन बन जाएंगे, ये पक्की बात है।
1: तो सुनाओ आगे।
2: जब सुनीता जी 35-40 साल की थी, तब उनके पति की डेथ हो गई थी, तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने पिता का रोल भी निभाया।
1: अच्छा, वहाँ से उनकी जिंदगी में ट्विस्ट आया?
2: नहीं, असली ट्विस्ट आया जब वो 57 साल की हो गई। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन हो गए, अब उसके पास करने को खास कुछ नहीं था। तब उसे लगने लगा कि घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान देते देते वो अपनी तरफ ध्यान दे ही नहीं पाई। उनका शरीर भारी हो गया था, जोड़ों में दर्द रहने लगा था, अकेलापन लगने लगा।
4: मैं समझ सकता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हमें लगने लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं।
1: ऐसे में अगर कोई दोस्त साथ हो तो आदमी संभल जाता है।
2: अब आदमियों को तो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो औरतें पूरी जिंदगी हाउसवाइफ के तौर पर बिताती हैं, उनके लिए उस उम्र में दोस्त बना पाना बड़ा मुश्किल है।
1: इसीलिए हमारे समाज में बुजुर्गों को सत्संग और तीर्थ की सलाह दी जाती है, ताकि इसी बहाने वो चार लोगों से मिलकर अपना सुख दुख बांट सके।
2: बिल्कुल सही, लेकिन सुनीता जी की सेहत अब इस लायक नहीं रही थी कि वो ज्यादा भाग दौड़ कर पाए। सुबह लोगों के साथ टहलने भी जाती थी तो थोड़ी ही देर में घुटने दुखने लगते और वो घर लौट आती। उनकी तकलीफ देखकर बच्चे भी उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन अब सुनीता जी का शरीर ही एक जगह आराम करता, उनका मन तो इधर से उधर भागता रहता। कभी कभी उन्हें लगता था कि अब एक बेटी की शादी करवानी है, ये जिम्मेदारी और पूरी कर ले फिर कहीं तीर्थ पर निकल जाएगी। फिर कभी लगता अब बस हो गया, सब अपने अपने मन के हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं, अब तो मर जाना बेहतर।
4: उनके मन में मर जाने के ख्याल आने लगे हैं?
2: हाँ, क्योंकि उनके पास तसली से बात करने वाला कोई नहीं था।
1: काम की अपनी मजबूरियां होती है और आजकल के बच्चे को तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहना पड़ता है, उन्हें दोष नहीं दे सकते।
4: हाँ, बच्चे अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिंदगी होती है, वो सब कुछ अब बूढ़ों के हिसाब से नहीं कर सकते।
2: आप दोनों की ये बात तो बेस्ट है कि आप हर चीज के दोनों साइड देखते हैं। सुनीता जी को असली जिंदगी का दूसरा साइड नजर आया जब वो एक दिन आईने के सामने खड़ी थी। उन्हें लगा क्या उन्होंने इसी तरह के बुढ़ापे की उम्मीद की थी? लोग छोटे छोटे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, उन्होंने तो अपने जीवन के इस पड़ाव के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। अब जब पेपर इतना कठिन आ गया तो वो इससे भाग रही है। उस दिन उन्होंने ठान लिया वो भागेगी नहीं, बल्कि पूरे नंबरों से ये एग्जाम पास करेगी।
1: फिर
2: उन्होंने जिम ज्वाइन किया।
1: ओ, तो ये बात है जो हमारे लिए इंस्पायरिंग है।
2: अरे नहीं दादू, आजकल बहुत सारे बुजुर्ग जिम जाते हैं और जिम में उन्हें कराया क्या जाता है, वही हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जुम्बा वुम्बा के थोड़े मोज, थोड़ा योग और प्राणायाम।
4: इसके अलावा जिम में और क्या करवाएंगे?
2: वही तो, अब आया असली टर्निंग पॉइंट। एक साल तक सुनीता जी ये सब करती रही पूरा मन लगाकर, उनका वजन भी काफी संतुलित हो गया, और लाइफ को लेकर उनकी सोच भी थोड़ी पॉजिटिव हो गई। उन्होंने अपने जिम ट्रेनर से कहा, मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है।
1: वेट ट्रेनिंग मतलब वो डंबल उठाना?
2: हाँ, शुरुआत तो छोटे डंबल से ही की, फिर उन्होंने वेट लिफ्टिंग की एडवांस ट्रेनिंग शुरू की और जिस साल उन्होंने अपने 60 साल पूरे किए उस साल उन्होंने अपनी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग का स्टेट गोल्ड जीता।
4: अरे वाह, कहानी की एंड तो इंस्पायरिंग है।
2: नहीं छोटे दादाजी, कहानी अभी खत्म कहाँ हुई। उनके आसपास के कई सारे लोग जो दबी जबान में उन्हें चिढ़ाते थे, बुढ़ापे में नया शौक आया है, हड्डियां वड़ियां टूट जाएंगी, तब बुढ़ापा बिस्तर में कटेगा, घर का पैसा अस्पताल में बर्बाद करेगी और भी क्या क्या, वो सब देखते ही रह गए। जब उन्होंने नेशनल गोल्ड भी जीत लिया, आज वो 69 इयर्स की है और कितने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कई सारे मेडल जीत चुकी है। रोज 5 किलोमीटर लगभग दौड़ती है, इतनी फिट है कि आपकी कॉलेज वाली सुनीता को भी फेल कर देगी।
1: यानी छोटे छोटे कदम उठाकर भविष्य के लिए तैयार होना सबसे सही स्ट्रेटजी है।
2: एकदम सही, किसी भी उम्र में कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है।
4: तो फिर हमें भी इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके सीखने हैं।
1: दुर्घटनाओं में हमारा वश नहीं, लेकिन तैयारियों पर तो है। तो फिर सारा जोर आपातकालीन तैयारियों पर लगाया जाए।
4: काल करे सो आज कर।
1: मैं अपनी पेंशन को दो हिस्सों में कर दूंगा, एक को बैंक में ही सेफ रख दूंगा, दूसरे को इन्वेस्ट करूंगा।
2: बेस्ट, मैं आपको आज ही किसी अच्छे सलाहकार से मिलवाती हूँ।
4: आज तो सचमुच मजा ही आ गया।
1: हलवा खा के?
2: नहीं, कॉलेज वाली सुनीता को याद करके।
4: लक्ष्मी बिटिया, तू भी मेरी टांग खींच रही है।
3: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूँ कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्ध जन। दोस्तों, आज वृद्ध जनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयरगिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, आज की गप्पेबाजी यही खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी बातें उतनी ही एंजॉय की जितनी हमने आपके साथ शेयर करके की।
1: बिल्कुल, और जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही हमें भी अब विदा लेनी होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम फिर मिलेंगे और ढेर सारी मजेदार बातें लेकर आएंगे।
2: अरे हाँ, अगले बार और भी धमाल मचाने वाले हैं। तब तक के लिए जिंदगी का मजा लीजिए, मुस्कुराइए और हमें मिस करिए।
1: तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सिर्फ और सिर्फ FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर।
2: नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 22, आपातकालीन तैयारी। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी RJ किडनी ने और भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने। आपने इसमें मित्र की आवाज सुनी, उस किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सहयोग दिया RJ किडनी ने और रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो व्यवस्था की प्रस्तुति।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर, और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर

उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही तलच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: कागज में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पर। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

सुमन की गायन शैली शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन वे अन्य शैलियों में भी निपुण थी। उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करती रही।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया। चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स, उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताजा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

0: की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
1: तुमने पुकारा और हम चले आए जा।

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तस्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तस्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्द गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

क्या तुम आसमानों में रहते हो? इसीलिए शायद मेरी आरज़ू से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर ये हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसे हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरते हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने

दुआओं का असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता। सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

तेज बहती धाराओं से गुजर कर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिम

श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो व्यवस्था के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब समाप्त होने पर आ चुके हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे होंगे। उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, सुझाव भेजते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है आपके सुझावों को पढ़ने के बाद। आपके कमेंट्स और आपके सुझावों से हमें ऊर्जा मिलती है और टीम रेडियो वितस्ता हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती है। श्रोताओं, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके लिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं, और हम 15 अगस्त के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम ला रहे हैं जो आप सुनेंगे रेडियो वितस्ता पर, और साथ में हम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दे रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:35। सुरों की खुशबू और अपनों की मिठास के साथ मैं आपका दिल अजीज दोस्त, आपका हमनवा भारत सोपोरी। अब थकावट मिटाने और सुकून की आगोश में समाने का वक्त आ चुका है। रेडियो वितस्ता की इस सुरीली महफिल का पर्दा गिराने से ठीक पहले आइए दिल से और दिल में बसा लेते हैं आज यानी 13 अगस्त 2026 के सबसे खास लम्हों को। 13 अगस्त 2026 विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो श्रोताओं, आज का दिन जागरूकता, इंसानियत और देशभक्ति के रंगों से सराबोर रहा। पहला, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डे, डोनेशन डे। आज का दिन हमें ये एहसास कराता है कि जाते जाते भी हम किसी की बुझी हुई जिंदगी में उम्मीद का नया चिराग रोशन कर सकते हैं। अंगदान महादान है जो मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी यानी लेफ्ट हैंडर्स डे यानी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया गया। दुनिया भर में बाएं हाथ से काम करने वाले प्यारे लोगों की विशेषता और प्रतिभा को सराहने का ये खास दिन है। दाएं हाथ की इस दुनिया में उनके अंदाज और हुनर की आज हमने दिल से प्रणाम किया। जी हाँ दोस्तों, टीम रेडियो वितस्ता में हमारे पास रेडियो ऑपरेटर कृष्णा है जो लेफ्ट हैंडर है। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं आज के इस दिवस की, और क्योंकि वो पूरी कोशिश और पूरा प्रयत्न करते हैं इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने के लिए। स्वतंत्रता दिवस की आहट, 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व से ठीक दो दिन पहले आज से ही पूरे देश में देशभक्ति की तरंगे चरम पर हैं। हर घर तिरंगा की गूंज और आजादी की हवाओं से माहौल पूरी तरह तिरंगमय हो चुका है। जी हां, आप सभी श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं, देश सबसे प्रथम होता है। आप भी अपने घर के ऊपर तिरंगा जरूर लहराएं। यह था आज का विषय, और हर दिन के लिए और आपके लिए मैं लाता हूं कुछ पंक्तियां जो आपको समर्पित करता हूं। आइए आज के इस सुहानी रात में इन पावन एहसासों को संजोकर विदा लेते हैं। आज की पंक्तियां यूं है, किसी के काम आ जाए ये जीवन, यही सच्चा पैगाम रहे। किसी के काम आ जाए ये जीवन, यही सच्चा पैगाम रहे। दिलों में देशभक्ति का जज्बा, लबों पे शांति का नाम रहे। वितस्ता की पावन धाराओं से बहता रहे ये अपनों का प्यार। वितस्ता की पावन धाराओं से बहता रहे ये अपनों का प्यार। कल फिर सजेंगे सुर के मेले, जब तक ढले ये शाम रहे। जी हां दोस्तों, ये पंक्तियां आप सभी के नाम, और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 14 अगस्त 2026 शुक्रवार के लिए जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करेंगे, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार।
छह बजे भक्ति संगीत आप सुनेंगे, कल शुक्रवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर होगा कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 4, विश्वास होगा शीर्षक, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 शुक्रवार को आप सुनते हैं रंगमंच की ओर। कल मानव मेहरा आपके लिए ला रहे हैं एक और एपिसोड जो आधारित है फिल्म सौदागर पर, जो 1973 में बनी थी। ये रंगकर्मियों और कलाकारों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है जो शुक्रवार को हम सुबह 8:30 प्रसारित करते हैं, जरूर सुनिएगा। 9:30 फिल्मी किसे एपिसोड 1 आन मिलो सजना होगी फिल्म, पेश करेंगे दीपक कश्यप। और 10:10 पर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम एपिसोड 2, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी और कल शुक्रवार है, आपको इंतजार रहता है पूरे हफ्ते कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जो हम दिन के 2:00 प्रसारित करते हैं आपके फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम। कल 2:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 6:00 भक्ति संगीत और 6:30 शाम में गजल और 7:00 सुनहरे पल एपिसोड 8 शैलेंद्र पर यह कार्यक्रम, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मौसम तुम्हारी यादों का। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रही है हमारी कैजुअल अनाउंसर अनु। आशा है आज का ये सफर आपके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़े जा रहा होगा। अब अपने दोस्त और साथी भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी आवाज, अंबाला का अपना रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। हर दिन सुबह 6:00 से 9:00 तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंगदान का संदेश फैलाइए और तिरंगे की शान में अपनों से प्यार बांटते रहिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।